हाँ जी ग्राम अर्जुन को तासोरे रेडियो अमन एफ मटर सी शरीय चार बटा ग्राम प्रोग्राम दे फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन पर तमाम सरा दिए बोले सुना दूर सुबह जोपुरी ताजा प्रोग्राम और ए फोर के कॉस्मेटिक स्क्रीन सरा मुख्तलिफ प्रोडक्ट थी जगह तासो इस्तेमाल रिशी मुख्तलिफ किस्म क्रीमुना मुख्तलिफ किस्म फेस वाश ये मुख्तलिफ किस्म शैम्पुआन दकशानी साबुनुना और सरा सरा तेल देगा खुनो पाउडर दा हर सतासो दा खुली शे मैसेज कर दे चाहिए मुक्तदा ना तो मत हौसला हार दा नाचे दा मुक्ता उलगोनु दाना दुता लगोची।

0: शुक्रिया। आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम।

0: मैं सजीदा खालिद भी अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप कैसे हैं? मैं बहुत जबरदस्त हूँ, आप बताएं, आप ठीक है, खैरियत से हैं? बहुत अरसे बाद मुलाकात हुई, बहुत शुक्रिया जी। आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक, जो गुजरा हुआ ईद है आपको बहुत बहुत मुबारक, ठीक है जी। एनीवे कॉल तरफ से गुरु काल को उनकी सुख दिया उदकम जने दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, रेडियो गुलाब पर खरीदा गुरा जब भी जम काल ने मिला, लेकिन काल बसेंगे मिला शुक्र देता सुलाबाद की। एनीवे जनाब अल मैसेज गुड़ो पार्टिसिपेशन वालेकुम अस्सलाम जनाब खैर मुबारक शे जी, कम अख्तर है अख्तर खुद ले रहे
1: अख्तर लाड़ के ना
0: काल ऊंचे तो
1: अख्तर
0: सही था तेरशे भी अख्तर मुबारक तेरशे भी अख्तर दू बताओ डेढ़ डेढ़ मुबारक शे बस वो खोड़ ले
1: दिखा
0: सर क्रिकेट सर शौक दे
1: शौक
0: के बैटिंग के बॉलिंग के
1: बैटिंग के
0: बैटिंग के
1: बैटिंग के
0: नो खे तरफ था बैटिंग के गस तरफ था
1: खे तरफ था
0: क्या ना कम खिलाड़ी कम खिलाड़ी दे फखदे
1: खिलाड़ी मारे बाबर आजम फखदे
0: बाबर आजम दा वाले कमेंट्स गुरु सैयद शबीर अहमद शिराजी सलाम के सलाम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम ईद मुबारक हो बहुत शुक्रिया जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो आरिफ आसिफ सलाम रेडी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम दिन अलावा हैदर अफरीदी अभी मुदावाई चिल्वी अख्तर दी मुबारक शाह खैर मुबारक जी हैदर अफरीदे चर तक आई बेमड़ा पता देने लगी क्या चर तक आए भी है ढेर वक्त बाद आसासो कमेंट सीधे का राग ले अदर तो वो एक कुर्ब कुर्गी के ना पदा महाल जॉब मन दिए अदा हिदर अफरीदी ने दीदिंग हर प्रोंग के चीज आप कॉल्स वगैरह कवले आदर कराची ने वे उनके कॉल्स को कवले आयु का आगाज कुंदे जिन्हें आप डिस जाते मिस को नो हिदर अफरीदी आयु का कता से डिस जाते मिस कई हाँ नो बस आहो जी अगे तो पार राजे खां कना अगे तो पार अगे तो राजे कना मना शौत खुराजे गल नगल मना।

योर जरूरी ऐलान द न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल सेंटर मशर डॉक्टर प्रोफेसर होम्योपैथिक डॉक्टर अकबर कुरैशी सेब्बा द 21 महीना तरद्वेम जून पोरे प चुटेवी द डॉक्टर सेब मरीजान द खपल चेकअप द पारा प द्रेम जून यानी द बुध परवस क्लिनिक ता तशरीफ रोड़े छे द मजीद मालूमातो द पारा पदे नंबर राबिता उकड़े 0311 84 33

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ.
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
0: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज़्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तरमंजा अवली नए वनडे मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लुबेगे। द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान शहीन शाह आफरीदी द टॉस पर मुकाबंदी ओवल चिन्हन रजबा यदगार जुड़ो मुंग बदा कोशिश हुई चे ऑस्ट्रेलिया टीम पर कम न कम स्कोर बांधे आउट को वजह दीवी चे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तरमंजा तरवोसा योसल यूलस मिचुना लुबेदली पदे के ऑस्ट्रेलिया ता यो अव्या मिचुना गटलो सरा वजह बरतरी असिलदा पाकिस्तान सिर्फ शपक देश मिचुना गटली और द्रे मिचुना द बगैर नतीजे खत्म शवेदी। याद दीवी चे पाकिस्तान टॉस गटलो न पस द फील्डिंग फैसला करे दे वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया तरमियांजा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दावली ने वनडे में जरी दे। और शरीकों द मौसम हाल मौसमियातों मुहकमे तरमखा तेरह सलीरेश घंटों के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाबशासिमों के पासमान वरेजे औजने इलाकों के बरान शवेदे। मौसमियातों मुहकमे तरमखा तेरह सलीरेश घंटों के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाबशासिमों के ज्यात न ज्यात दर्जे हरारत शपक दर्श और कम न कम दरिश दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे। पहावा के दनमय तनसुब द्वादेश फीसद और आवा रफ्तार लस किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड करे शवेदे। बल अड़खता सबाबन मर सबा सहर अतमी नट दपासा पिंज बजे से रही औ माखम अतलस मिनट दपासा ओव बजे बा डूबेगी। दाऊ द रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरुना नोरा मुहिमो खबरुना अवरे दलो दपारा रेडियो अमन 88.4 करक टांग और बटाग्राम फेसबुक पेज लाइक के उस माता द न्यूज टीम सरा राकई जजब दलोई अल्लाह पामान पा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।